अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

जय श्री रमापति रामचंद्र की जय श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय जय श्री सीताराम नमः।

वर्जनं भो बीजानां वर्जनं सुखसम्पदां वर्जनय्यमदूतानां राम रामेति गर्जनं श्रीसीतारामनां महाराज की। संत बड़े परमारथी भेष धरे यमदूत राम नाम की गर्जना भाग जाए यमदूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः।

प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत के सभी जीव देव अथवा आसुरी स्वभाव के होते हैं। श्री भगवान दोनों के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि असुर स्वभाव वाले जन्मों तक मुझे नहीं समझ पाते, वह अंततः अधम योनि को प्राप्त होते हैं।

क्रोध व लोभ को नरक के तीन द्वारों की संज्ञा देते हैं। वह कहते हैं कि काम के प्रभाव में शास्त्र विधि का त्याग करने वालों की गति असंभव है। अतः हे मानव, इन तम द्वारों से मुक्त होकर शास्त्रानुसार कर्मों में लीन हो।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी। आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांगी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध रखी। कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे, अपने साथियों के साथ देखा कि घंटी भी बंधी हुई। समझ गए गोपी बड़ी चालाक, तो घंटी को आदेश दिया कि तुम बोलना नहीं, चुप रहना, मेरे साथियों को माखन खाना। मटकी फोड़ी गई, सब साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, वो तो सबको खिला के खाते थे। जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा, ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली, हमारे भगवान भोग लगा रहे हो, तुम कैसे चुप रह सकते हैं? हमारा तो काम ही यही है कि जब भगवान भोग लगाएं तो हम सारे संसार को बताएं कि अब प्रसाद ले लो, भगवान ने भोग लगा लिया। बस आ गई गोपी, पकड़ लिया, ले गई यशोदा के पास। यशोदा अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

दूसरा तर्क दिया, कहने लगे माँ जरा सोचो माखन कैसे खा सकता हूँ, इतना छोटा सा बालक, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन कहाँ टांग के रखते हैं। मैया मोरी।

इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा तो फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया,

विशेष बात हो गई। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माँ ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई माँ नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के। कहने लगे, माँ मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं है। ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे,

कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखे शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे। अयोध्या के सारे निवासी एक टक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है। आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

राम अवध जब आएंगे, मेरे राम अवध जब आएंगे।

पूछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं, पूछे कौशल

0: महानदी, महानदी। चित्रोत्पला, महानदी।
1: मेरा परिचय खोज रहे हैं। महानदी का परिचय? अरे मैं ही तो महानदी हूँ।
0: हाँ?
1: हाँ, मैं ही। मेरा जन्म स्थल मध्य प्रदेश में सिहावा पहाड़, छत्तीसगढ़ का इलाका, मेरे बालपन की क्रीड़ा भूमि, वहां से आई हूँ। चमचमाती उछलती पहुंची विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र की ओर, फिर मालभूमि पार कर समतल प्रदेश की तरफ। छत्तीसगढ़ की लाडली कन्या हूँ मैं। यहाँ की नन्ही बालाओं के साथ चलते हुए चपल गति में छंद सीखा, तुतला कर बोलना, अधेर किसानों से सुना स्नेह संबोधन, साथ लेकर बह चली आगे की ओर। उड़ीसा बना यौवन की रंग भूमि। वहाँ मधुर प्रकृति के मनोहर गोद में नाची हूँ, गीत गाया है अपने प्रियतम सागर से मिल जाने तक।

सिहावा पर्वत शिखर से पारादीप के पास संगम तट की दूरी है 851 किलोमीटर। इसमें से महानदी 357 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 494 किलोमीटर उड़ीसा में बहती है। कहते हैं सिहावा में कभी श्रृंग ऋषि का पुराण प्रसिद्ध आश्रम था। आज भी सिहावा के पास की पहाड़ियों को यहाँ के लोग गर्ग, कुंभज और मुचकुंद आदि पुराण युग के विशिष्ट ऋषियों के नामों से ही जानते हैं। सिहावा गांव के छोटे छोटे खपरेल के घर, उनको छूकर बहती हुई महानदी की जीर्ण छीर्ण धारा, कैनवास पर किसी निपुण चित्रकार के हाथ से खिंचे चित्र की तरह दिख जाते हैं। यहां का शीतल मंद पवन मानो बहाए ले जा रहा है अतीत, बहुत दूर की बात, रामायण की कथा।

0: लोमपाद महाराजा के राज्य में अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ा। राजा का आदेश पाकर जरता वेश्या श्रृंगी ऋषि को अपने रूप और सौंदर्य से वशीभूत कर वहां ले आई। फलस्वरूप राज्य भर में वृष्टिपात हुआ और साथ ही दुर्भिक्ष दूर हो गया।
1: अजन उन्हीं ब्रह्मचारी श्रृंगी के तप बल से छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी का उद्भव हुआ। महानदी की धारा पर्वत तट के गणेश घाट से ही दिखाई देने लगती है। ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। गोविंदपुर गांव के निकट से निकली सोनामुखी धारा के साथ मिलकर ये महानदी नाम धारण करती आगे बढ़ती है और इसी के साथ साथ बहती चलती है सीता नदी। सिहावा और महानदी की महिमा के बारे में यहाँ के पुजारी श्री मुरली गिरधर कहते हैं,
2: तो यहाँ सिहावा गांव में बहुत से बहुत स्थान पाए गए हैं। उर्व की ओर में नजदीक में शीतला माने हुए देवी पाए गए हैं और उसी पहाड़ में माता शांता की गुफा वहाँ भी पाए गए हैं और इसी पहाड़ में दुर्गा महाकाली दुर्गे की स्थान गुफा यहाँ भी पाए गए हैं। यहाँ गांव वाले भाइयों की रोजगारी केवल खेती बाड़ी इदो सिवाय और कोई गुंजाइश नहीं
0: कभी सुना है आपने छत्तीसगढ़ के सरल निष्कपट किसान विवल स्वरों में कैसे मेरा गुणगान करते हैं? सफेद चांदनी जब मेरी देह पर चांदी की चादर उड़ा देती है तब उनका सम्मिलित स्वर मेरे किनारे के पहाड़ शिला वृक्षादि सबको मुग्ध कर देते हैं। मैं रुक कर सुनती हूँ। रुक कर सुनती हूँ।

0: महानदी तट पर अवस्थित राजिम इलाके का पुराणों और इतिहास में बहुत महत्व है। यहाँ पर महानदी में उसकी सहायक नदियाँ तैरी और सोंढूर आ मिलती हैं और इस मिलन स्थली पर प्राचीन शिव मंदिर कुलेश्वर अवस्थित है। 9वीं शताब्दी में राजा विलासतुंग ने इसका निर्माण किया था। राजिम का महत्व बताते हुए लेखक पुरुषोत्तम अनासक्त बताते हैं,
1: महानदी छत्तीसगढ़ की गंगा है और राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग है। महानदी ने छत्तीसगढ़ को उपजाऊ धरती दी है और धान की खेती इस इलाके की सबसे बड़ी विशेषता है। लोग इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म से छत्तीसगढ़ का संबंध रहा है। ऐसा कहा जाता है कि महानदी के रेत में सोना मिला करता था। सही बात तो यह है कि सोंढूर का नाम ही छत्तीसगढ़ के लोगों ने रखा है, सोना जिसमें ढुलता हो, सोना जिसमें से आता हो। और पहले लोग यहाँ से सोना निकाल लिया करते थे। राजिम एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। राजिम में भगवान श्री राजीव लोचन का विख्यात मंदिर है और इसमें आदमकद प्रतिमा है भगवान विष्णु की। वह विष्णु की प्रतिमा यज्ञ पुरुष के रूप में स्थापित है। राजिम वैष्णव तीर्थ भी है, राजिम शैव तीर्थ भी है और राजिम जो है वो जैनियों का भी तीर्थ

0: रहा है क्योंकि उसके भी कुछ चिन्ह यहाँ मिलते हैं। गुरु घासीदास जी इसी इलाके के हैं। इसके अलावे और कुछ ऐसे व्यक्ति भी जन्म लिए जिनके विषय में इतिहास तो मौन है लेकिन दंत कथाएं प्रचलित हैं। एक बहुत ही आदिवासी नायक जो बड़ा प्रसिद्ध रहा है जिसका नाम है कचना धुरुआ, वो इसी इलाके का था।
1: स्वतंत्रता संग्राम में भी छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने यहाँ अस्पृश्यता निवारण के लिए कठोर संघर्ष किया। श्री अनासक्त जी कहते हैं,
0: स्वतंत्रता संग्राम में महानदी के तट पर रहने वाले लोग बहुत अधिक सक्रिय रूप से भाग लिए और उसमें धमतरी का स्थान भी महत्वपूर्ण है। धमतरी के पास कंडई नामक एक गांव है जहां से सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। धमतरी में उस समय छोटे लाल बाबू थे, नत्थू जी जगताप थे, नारायण राव जी मेघावाले थे। ये तमाम लोग स्वतंत्रता संग्राम के महानतम सेनानियों में से हैं। मैं इनका नाम जिनका ले रहा हूँ। और इसी इलाके में पंडित रविशंकर जी शुक्ल ने भी इनके सहयोग से स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र किया था। राजिम में उस समय पंडित सुंदरलाल जी शर्मा थे जिन्होंने अस्पृश्यता निवारण का कार्य शुरू किया और जिससे गांधी जी भी बहुत अधिक प्रभावित हुए। रामायण और महाभारत भारतवर्ष की ऐसी रचनाएं हैं और ऐसे महाकाव्य हैं कि हर इलाके में इनका प्रभाव जनजीवन पर पड़ा है। महाभारत का प्रभाव बहुत अधिक इस इलाके पर पड़ा और यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी भाषा में महाभारत को कहना शुरू किया जिससे पंडवानी का जन्म हुआ।

0: छत्तीसगढ़ के महानदी क्षेत्र में हुए जनजागरण और लोक भाषाओं के विकास के बारे में लेखक नारायण लाल परमार जी का मत है।
1: नहर सत्याग्रह कंडेल में हुआ था, जंगल सत्याग्रह रुद्री के पास हुआ था। वो नहर सत्याग्रह, नहर का पानी नहीं लेने देती थी सरकार, तो उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन शुरू किया। वहाँ उस सिलसिले में भी गांधी जी आए थे यहाँ। तो ये क्षेत्र भी इस लोक कला की दृष्टि से बड़ा धनवान रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में दो ही ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक तो अपने बघेरा के दाऊ रामचंद्र देशमुख, और दूसरे जो आपके हबीब तरवी साहब हैं। अब भरतरी की कलाकार भी आपको बिलासपुर में मिल जाएगी, सूरज भाई खांडे। तो इस तरह से हर कला क्षेत्र में यहाँ आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे।
0: महानदी के तट पर एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है सिरपुर। पहले यह शरवपुरी राजाओं के अधीन था। यहाँ पर है प्राचीन गंधेश्वर महादेव का मंदिर। 8वीं शताब्दी के सोमवंशी राजा महाशिव गुप्त द्वारा निर्मित बौद्ध विहार यहाँ की महत्वपूर्ण प्राचीन कीर्ति है। रायपुर से कसडोल होते हुए आने पर गिधौरी में महानदी पार करने पर पड़ता है शबरी नारायण मंदिर। भगवान रामचंद्र की यहाँ पर शबर राजा पूजा करते थे। उनकी स्मृति में देवता का नाम शबरी नारायण या शिवरी नारायण हो गया है।
2: शैशव और किशोरावस्था का क्षण और चंचल दिन बिताकर उन्हें पीछे छोड़ते हुए मैं विकसित होती गई, पल्लवित होती गई। यौवन के ज्वार से मैं हुई विमुख। फिर उड़ीसा की धरती छूटी हो, यौवन की प्रगल्भता से भरी। यहाँ मैं नायिका हूँ, कभी गुमान भरी तो कभी प्रगल्भा। भारत में इतनी नदियां हैं, किसी को तो महानदी कहकर पुकारा नहीं जाता। मुझे ही यह गौरव मिला है। हाँ, एक नाम और है मेरा, चित्रोत्पला।

मेरी यात्रा भूमि उड़ीसा में जगन्नाथ पधारे। कहा जाता है कि आज के इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण सदियों पहले हुआ था। संबलपुर, सोनपुर और बिनिका के ऊपर शैया पर लौट कर मैं आवेश और रोमांच में सिहार उठी। मुझे लगा प्रियतम मिलन का पथ यही है। धान का भंडार भरा है इस धरती पर। मेरी गति चंचल हो उठी।

0: महानदी के तटवर्ती संबलपुर, सोनपुर, बिनिका आदि इलाके ऐतिहासिक और पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर चित्रंजन मिश्र बताते हैं,
1: महानदी कूल अवस्थित थिवा दर्शन स्थान मानक मध्य हुमार बक्र मंदिर होचे एक सर्वश्रेष्ठ निदर्शन।
0: महानदी के किनारे अवस्थित हुमा का बक्र मंदिर एक विशिष्ट दर्शनीय स्थान है। ये बक्र मंदिर बक्र शैली में तैयार किया गया था या बाद में किसी कारण यह वक्र रूप हो गया था, इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तरह ये दर्शकों के लिए कौतूहल की सृष्टि करता है। ये मंदिर महानदी के किनारे स्थित 8 शिव मंदिरों में अन्यतम है।
1: विश्वनाथ संबलपुर जिपरी मानेश्वर सेपरी हुमार ए बिमलेश्वर मंदिर टी ऐतिहासिक दृष्टिकोण एवं धार्मिक दृष्टिकोण सुप्रसिद्ध।
0: महानदी के इन इलाकों में अनेक कलाकार, चिंतक, मनीषी, साहित्यकारों का आविर्भाव हुआ है। बौद्ध दर्शन की शाखाएं जैसे वज्रयान और तंत्रयान का विकास यहाँ हुआ था। संत कवि भीम भोई ने इसी के तटवर्ती छोटे से गांव खलियापल्ली को अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ने महानदी तटवर्ती अरण्य सुषमा को काव्य भाषा देकर जीवंत कर डाला। इस क्षेत्र की महिमा व समस्या के बारे में बुद्धिजीवी डॉक्टर श्रद्धाकर सुपकार कहते हैं,
2: महानदी ऊंची और माँ आप बराबर हमको पालन करे ऐसी माँ पूरी।
0: पश्चिम उड़ीसा के संबलपुर अंचल की भाषा संस्कृति की एक अलग मिठास है। इस अंचल के अनेक वीर सपूतों ने स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महानदी इस अंचल की माँ है, लेकिन प्रदूषण के कारण अब महानदी का जल व्यवहार के योग्य नहीं रह गया है।
2: एठाकार पर्व परमाणी नुआखाई पुष्पनी विशेष कर ये जो कृषि संस्कृति ये आमर विशेषत्व।

0: महानदी में प्राचीन काल में नौ वाणिज्य चलता था। अभी से एक बार फिर राष्ट्रीय जलपथ के रूप में परिणत किया जा सकता है। इस विषय पर उड़ीसा विधानसभा के सदस्य श्री पंचानन मिश्र ने अपना विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किया है।
1: महानदी को आमर पूर्वपुरुष माने ए भारत वर्ष रे चित्रोत्पला गंगा भाव रे नामित करिसेंदे एवं मानि आसिसेंदे।
0: हमारे पूर्वजों ने महानदी को चित्रोत्पला गंगा का नाम दिया था। इस महानदी में उड़ीसा में अभ्यंतरीण नौ वाणिज्य चलता था। वर्तमान में सरकार के वाटरवे कमीशन द्वारा नदियों के जलपथ के विकास के लिए जो योजना बन रही है उसके अनुसार महानदी के लिए भी योजना होनी चाहिए।
1: एठी जो विदेशी पक्षी सब आसंती हिमालयन बर्ड्स संबलपुर पाखरु धमाठारु प्राय बहुत पर्यंत माने लक्षाधिक परिमाण रे एठी ठुलो।
0: महानदी के इस अंचल में शीतकाल में बहुत विदेशी पक्षी आते हैं। इसी दृष्टिकोण से इस इलाके में पर्यटन के लिए विकास होना चाहिए।
2: मैं ही यहाँ गिरिराज नंदिनी हूँ। बाघ भालू हो या दंतावल हाथी या कुलांच भरते मृगों का झुंड, सब यहाँ निर्भय होकर विचरण करते हैं। दंतावल हाथी के गंडस्थल से निकलती हुई मदजल मेरे वक्ष स्थल को आप्लावित कर देती है। पिछली की तरह दौड़ते मृगशावक मेरे स्थिर नील जल में छवि निहार कर आश्चर्य से ठिठक जाते हैं। शीतकाल में दूर हिमगिरी से आने वाले अतिथि पक्षी खूब आनंद में किलोल करते विचरते दिख जाते हैं मेरे तट पर।

0: महानदी का यह सात कोसी खाल और इस गहरे विशाल खाल के दोनों ओर शैल राजी का मनोरम दृश्य। सात कोस के घेरे में फैला ये खाल चार चार जिलों कटक, पुरी, फूलवाड़ी और ढेकानाल की सीमा को स्पर्श करता है। सात कोसी खाल के निकट ही टिकरपड़ा एक और अलग स्थल है। दोनों ओर घने वन, नदी तट पर घड़ियालों को पालने, पोषित करने और विवर्धित करने का प्रयास जोरों पर है। सरकारी योजना से इसको एक विशिष्ट अभ्यारण के रूप में और गरिमा मिल गई है। वहाँ के वन खंड अधिकारी श्री सुरेश चंद्र मिश्र के अनुसार,
1: सातकोसिया गंड अभयारण्य हमारे विशेष करी अनुगुल वनखंड इलाका रे
0: महानदी के तट पर टिकरपड़ा अभयारण्य 795 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। इस अभयारण्य में दुर्लभ जीव जंतु हैं। महानदी का सातकोसिया खाल इस अभयारण्य के क्षेत्र में है। यहाँ पर एक समय बहुत मगरमच्छ रहते थे। उनके वंश की समाप्ति के बाद 1975 में विश्व खाद्य संगठन की सहायता से भारत सरकार ने एक कुंभीर योजना शुरू की। उसी वर्ष नेपाल से लाए गए अंडों से 250 मगरमच्छ उत्पन्न हुए। इस योजना के फलस्वरूप उड़ीसा में घड़ियालों की संख्या में वृद्धि हुई और इन घड़ियालों के चमड़े से एक लाभदायक व्यवसाय की शुरुआत हो सकती है। महानदी के तट पर तीर्थों की तो माला बनी है। सोनपुर, बांकी, कंटीलो, वैदेश्वर, भट्टारिका, ध्वलेश्वर आदि अनगिनत स्थल, पैरी, सोंढूर, ईव, जीरा, तेल आदि उपनदियों का जल स्रोत अपने हृदय में धारण कर महानदी समुद्र की ओर चलती है। अनगिनत तीर्थों की धूली अपने अंदर समेट कर इटलाती मंद मंद चल

बाराबाटी दुर्ग के निकट से बहकर गुजरते हुए देख पाती हूँ इतिहास की विजय यात्रा। बाराबाटी दुर्ग ठहरा इतिहास के इस सारे उत्थान पतन से भरे इतिहास का मुख साक्षी।

स्वाधीनता के बाद भारत के पुनर्गठन और विकास पर्व में महानदी ने उल्लेखनीय भूमिका ग्रहण की है। मध्य प्रदेश में दूधवा गंगरेल आदि जलाशय बने, उड़ीसा में फिर हीराकुद बांध बनने पर बहुमुखी विकास के द्वार खुल गए।

कटक के निकट विद्याधरपुर में धान अनुसंधान केंद्र की स्थापना देश में कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एशिया महादेश के चावल के अनुसंधान में गौरवपूर्ण तीर्थ बनकर नया रूप ले रहा है। महानदी पारादीप के पास फॉल्स पॉइंट पर से जाकर सागर में मिलती है। सभ्यता की शिल्प की इतनी प्रगति होने पर भी आदमी के मन में बर्बरता का राज है। वो बदला जा रहा है, वो स्वार्थी बनता जा रहा है, स्वेच्छाचारी बनता जा रहा है। इस शिल्प सभ्यता के तहत प्राकृतिक संपदाओं का ध्वंस करने में लगा है। जंगलों का लोप होता जा रहा है, नदी का नील जल कारखानों की उपस्थिति में दूषित होता जा रहा है, प्रकृति अपना संतुलन खो रही है। महानदी से भला कैसे बचे रह सकती? सभ्यता का अभिशाप उसे भी धारण करना पड़ेगा। विष के जीवाणु इससे जीवन को बचाकर रखना जरूरी है।

0: इस प्रकार
1: मैं बहती चली
0: ये बहती चली जा रही है,
1: युगों से चल रही है, चलती ही रहेगी, देखती जाएगी सभ्यता का
0: आगमन,
1: आदमी के आंसू पसीने के संग्राम में महाजीवन के स्रोत
0: की तरह
1: महासागर के साथ
0: मिलकर
1: एकाकार होने
0: के लिए
1: दौड़ रही है
0: ये
1: महानदी
0: युग युग से सदियों से।

बाल कृष्ण की प्रीत में तन्मय हर गोपी दिन रात कान्हा के ही सपने देखती है। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया ग्वाल बाल संग गोकुल में गैया चराते, बंसी बजाते, माखन चुराते और गोपियों संग रास रचाते हुए मनमोहक लीलाएं करता है। यमुना किनारे सांझ सकारे जब गोपाल मुरली की मधुर मधुर धुन छेड़ता है, तब गोपियां सुध बुध खो बैठती हैं। कृष्ण भक्त गोपी राधा नंदलाल से प्रीत तो कर बैठी, मगर उसे चिंता सताती कि कहां त्रिभुवन का स्वामी सर्वव्यापी नारायण और कहां वो ब्रज की एक साधारण सी गोपी। वो ध्यान में मग्न बंसी भजैया से पूछती रहती, हे गोविंद बांके बिहारी तू ही बता कैसे निभेगी प्रीत हमारी।

शिव महिमा प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम

शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि असुर राज जलंधर का संदेश लेकर राहु कैलाश पर्वत पहुंचा और मांग की कि देवी पार्वती को उसके साथ जलंधर की सेवा में भेज दिया जाए। क्रोधित होकर भगवान शंकर ने जलंधर को युद्ध के लिए ललकारा। भीषण युद्ध के उपरांत भी महाप्रभु विजय प्राप्त न कर पाए। जलंधर पत्नी वृंदा का

0: पतिव्रत धर्म उसके पति का रक्षा कवच बना हुआ था। भगवान विष्णु ने मुनि नारद की सहायता से माया जाल रचा। मानसिक रूप में वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो गया। क्रोधित वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्नी विछो का श्राप देकर स्वयं आत्मदाह कर लिया। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाज्ञानी शौनक जी, दैत्यों का अगला महाबली राजा विप्रचित्ती महाबलशाली अवश्य था, परंतु आसुरी प्रवृत्तियों से दूर था। उसका भी एक पुत्र हुआ दंभ। दंभ जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था, परंतु वंश परंपरा आगे बढ़ाने के लिए उसके यहां पुत्र उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी। चिंतित दंभ से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने श्री विष्णु की आराधना करने को कहा।
2: अर्थात इस बार शुक्राचार्य ने परम पिता ब्रह्मा की अपेक्षा भगवान श्री विष्णु को अधिक महत्व दिया।
1: हाँ, दंभ ने श्री विष्णु की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। सृष्टि एक बार पुनः इस घोर तपस्या की लहरों से हिल उठी। देवराज इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता इस बार श्री विष्णु की सेवा में पहुंचे।
2: अर्थात द्विज श्रेष्ठ सूत जी, एक और आसुरी शक्ति का उदय होने लगा।
1: महाज्ञानी शौनक जी, ये सत्य है कि असुर राज बनते ही शुक्राचार्य से प्रेरित होकर शंखचूड ने पुनः सभी देवताओं को पराजित कर दिया। परंतु शंखचूड पहले के असुरों से भिन्न था।
2: असुर राज शंखचूड किस प्रकार भिन्न था महाभाग?
1: इसी पर विचार विमर्श करने देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में श्री विष्णु भगवान के पास पहुंचे।
3: हे दीन बंधु श्री विष्णु, महाबली देवाधिदेव असुरों का नाश कर चुके हैं, परंतु सृष्टि पुनः किसी के तप से डामाडोल हो रही है। अब ये कौन सी शक्ति प्रकट होने वाली है? मेरा इंद्र का सिंहासन भी पुनः हिल उठा है।
4: कमल नयन, क्या कारण है? मुझ सूर्य की उष्णता भी क्षीण पड़ती नजर आ रही है। क्या ये सब प्रलय के संकेत हैं?
5: हे देवराज इंद्र तथा सूर्यदेव, प्रलय अभी दूरस्थ है।
3: तो श्री हरि, फिर ऐसा क्यों हो रहा है?
5: देवराज, मेरा एक परम भक्त है दंभ, वो पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा में घोर तप कर रहा है। सृष्टि में पुनः संताप उत्पन्न होने का यही कारण है।
3: परंतु विष्णु देवा, आप तीनों ईश्वरों का एक स्वरचित नियम भी है। अपने किसी एक भक्त की भक्ति के कारण अपनी समस्त प्रजा को त्रस्त न होने देंगे, कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे।
5: देवराज इंद्र, उपाय हम सोच चुके हैं।
6: दनु पौत्र दंभ, हमारे समक्ष उपस्थित हो जाओ।
7: हे लक्ष्मीपते, आपने मुझे मेरी तपस्या के मध्य ही स्वर्ण किया। मैं कृतार्थ हुआ देवेश, कृतार्थ हुआ।
8: हे देवताओं, आप सबकी उपस्थिति से मुझे आभास होता है कि मेरी तपस्या सार्थक होने जा रही है।
5: मेरे भक्त दंभ,
7: प्रभु,
5: तुम्हारा ये विचार उचित है। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। मांगो, मन वांछित वर मांगो।
7: हे त्रिलोकेश, एक पिता की सबसे बड़ी अभिलाषा यही होती है कि उसका कोई वंश संचालक हो। धन, वैभव, ऐश्वर्य की अभिलाषा मुझे नहीं है। आपकी कृपा से ये सब मेरे पास असीम है प्रभु।
9: तो आपके पास जो नहीं है वही आप जगदीश्वर से मांग लें।
7: हे सूर्यदेव, मुझे आप जैसा ही तेजस्वी महाप्रतापी पुत्र चाहिए, जो सत्कर्मों पर चलता हुआ मेरी वंश परंपरा का विस्तार करे। हे विष्णु हरे, मैं आपकी इसी कृपा का पात्र बनने की अभिलाषा में ये

0: तपस्या कर रहा हूं। मुझे विष्णु भक्त पुत्र चाहिए महाप्रभु।
1: तथास्तु भक्तवरदंभ।
2: प्रभु
1: मेरे अवतार श्री कृष्ण का मुख्य पार्षद सुदामा कृष्ण प्रिया श्री राधा जी के श्राप से ग्रस्त है। मेरा आशीर्वाद है वही सुदामा तुम्हारी पत्नी के गर्भ से प्रकट होकर श्राप मुक्त होगा। उसका नाम रखना शंखचूड़।
0: आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभुवर।
1: और हाँ, स्मरण रहे, शंखचूड़ के बड़े होने पर उससे कहना कि वो तीर्थराज पुष्कर में परम पिता ब्रह्मा की भक्तिपूर्ण आराधना करे। ये हमारा आदेश है भक्त दंभ।
0: मैं धन्य हुआ प्रभु, आपके आदेश का अक्षरतः पालन होगा प्रभु। सृष्टि संचालक, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ।

0: दंभ पुत्र शंखचूड जयगीश्व मुनि के उपदेश पर अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर तुमने जो ये गुरुपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जप किया है उससे हम अति प्रसन्न हैं। मांगो, वर मांगो।
1: हे परम पिता, देवताओं के लिए मैं अजेय रहूं, बस यही वर मैं आपसे चाहता हूं।
0: तथास्तु। शंखचूड़, हम तुमसे और भी अधिक प्रसन्न हुए।
1: वो क्यों ब्रह्मदेव?
0: हर असुर हमसे सदा अमरत्व का ही वर मांगता आया है। ये वरदान देने में हम भी सदा असमर्थ रहे। तुम पहले असुर हो जिसने अमरत्व का वरदान नहीं मांगा।
1: परमपिता, जिन्होंने भी आपसे अमरत्व का वरदान मांगा उन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं रहा होगा। बाहुबल से सृष्टि में क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता? और फिर आपने मुझे देवताओं से अजय रहने का वरदान तो दे ही दिया है।
0: अरे शंखचूड़, तू तो अपने वंशजों से भी अधिक मूढ़ निकला। तू देवताओं और हम तीन ईश्वरों में भेद नहीं समझता। चल, यही तेरी नियति है, फिर भी हमें आस है कि तू अन्य दानवों के समान बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगा।
1: ब्रह्मदेव, आप किन विचारों में लीन हो गए?
0: हाँ, हम सोच रहे थे शंखचूड़ कि तुम जैसे धार्मिक प्रवृत्ति वाले को ऐसी ही धार्मिक सहधर्मिणी प्राप्त होनी चाहिए।
1: आपकी कृपा होगी तो ऐसा अवश्य होगा परमपिता।
0: शंखचूड़, तुम बद्री वन जाओ, वहां धर्मध्वज की अति सुंदर तपस्विनी पुत्री तुलसी पति प्राप्ति के लिए सकाम भाव से शिवजी की तपस्या कर रही है। तुलसी ही तुम्हारे लिए सर्वोपयुक्त पत्नी है, उसका शील सदा तुम्हारी रक्षा करता रहेगा।
1: जैसी आज्ञा विधाता।

0: परमपिता ने जो वर्णन दिया था उसी के अनुसार सुंदर तपस्विनी तुलसी यही प्रतीत होती है। फिर भी संशय मिटा लेना आवश्यक है। हे देवी, आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं? तथा यहां एकांत में किस उद्देश्य से बैठी हैं?
1: हे महापुरुष, मैं धर्माध्वज की पुत्री तुलसी हूँ तथा पति प्राप्ति की इच्छा से तप कर रही हूँ, परंतु आप कौन हैं?
0: मैं दनु का वंशज।

0: असुरराज दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूँ। पूर्व काल में मैं श्रीहरि का पार्षद था, परंतु श्राप पाकर इस जन्म में दानव वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। ब्रह्मा जी की आराधना सफलता पूर्वक संपन्न करने के पश्चात अपने धाम को लौट रहा हूँ।
1: हे असुर पुत्र, आप यहाँ ना रुकें। इस वन में मैं अकेली स्त्री हूँ। मान्यता है कि नारी जाति माया रूपी होती है, ब्रह्मा आदि तक को मोह में डालने में समर्थ होती है। अतः इससे पूर्व कि आप मुझ पर मोहित हो उठे, आप यहाँ से चले जाएं।
0: देवी तुलसी, मैं यहाँ परमपिता ब्रह्मा की आज्ञा से ही आया हूँ।
1: ब्रह्मा जी की आज्ञा से?
0: हाँ देवी, उनका कथन सत्य था। जगत की पतिव्रता नारियों में आप सर्वोपरि जान पड़ती हैं। जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूं, वैसे ही आप भी काम पराधीन नहीं हैं।
1: भद्र पुरुष, आपके विचार बहुत सात्विक हैं। मैं तो मात्र आपके संयम की परीक्षा ले रही थी। जानना चाहती थी कि एकांत में अकेली नारी को देखकर आपके हृदय में कैसे भाव आते हैं।
2: पुत्री तुलसी,
1: मेरे अहोभाग्य के विधात जो आपके दर्शन हुए।
2: तुलसी, तू किसकी परीक्षा ले रही है? ये शंखचूड़ तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। ये परम विष्णु भक्त है, मृत्यु के पश्चात पुनः गोलोक में चला जाएगा, तथा तू भी वैकुंठ में श्रीहरि का सामीप्य पाएगी।
1: मेरे लिए क्या आदेश है परमपिता?
2: तुलसी, तू शंखचूड़ से गांधर्व रीति से विवाह कर ले तथा सुखी रहे। यदि तू नारियों में रत्न स्वरूपा है तो ये शंखचूड़ सर्वोत्तम पुरुष रत्न है।
1: जैसी आपकी आज्ञा।
3: विधात, मैं शंखचूड़ का संपूर्ण वृत्तांत जानता हूँ। वो स्वयं इंद्र बनकर समस्त यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा है।
2: यही नहीं वैकुंठाधिपते, वो अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम तथा वायु आदि से भी अपनी आज्ञा का पालन करवाने लगा है।
4: विधात, वो सभी प्राणियों का एक छत्र सम्राट बन बैठा है।
3: परंतु देवगण, हमारी विवशता ये है कि शंखचूड़ की समस्त प्रजा उससे प्रसन्न है। उसके राज्य में ना अकाल पड़ता है, ना महामारी, और ना ही कभी अशुभ ग्रहों का प्रकोप होता है।
2: आप सत्य कह रहे हैं लक्ष्मीपते, देवताओं के अतिरिक्त सभी अन्य जीव सुखी हैं। उनमें किसी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होते। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म में स्थित हैं। दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव समान नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है विष्णु देवा, कि वो आपका अनन्य भक्त है।
3: विधात, वो आपसे भी वरदान प्राप्त कर चुका है, साथ ही तुलसी का सतीत्व शंखचूड़ का सबसे बड़ा आत्मबल है।
4: तो विष्णु हरे, क्या अब हमें सदैव उस असुर शंखचूड़ के अधीन रहना होगा? क्या आपका तथा परम पिता का वो असीम भक्त वास्तव में अजेय है?
3: देवराज इंद्र, भक्त वत्सलता के कारण भले ही हमारे हाथ बंधे हों, परंतु देवाधिदेव तो स्वतंत्र हैं। वे अवश्य ही कोई उपाय बताएं।

0: उपाय तो मात्र एक ही है श्री विष्णु, और वो है युद्ध।
1: देवाधिदेव की जय हो। आपके दर्शनों से हम कृतार्थ हुए।
0: ब्राह्मण, जब भी हमारे भक्त हृदय से हमारा स्मरण करते हैं, हम उन्हें चिंता मुक्त करने अवश्य आते हैं। हम जानते हैं शंखचूड़ बहु

0: नहीं है, जो आज्ञा।
1: वो भभूतधारी हमारा अनिष्ट कर भी नहीं सकता जब तक हमारे पास धर्म की शक्ति है। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दूत चित्ररथ कुछ नहीं।
0: असुरराज, न भूलें कि मेरे स्वामी परमेश्वर हैं, उनके लिए सब संभव है।
1: परंतु सर्वेश्वर के हाथों स्वयं प्रतिपादित किए धर्म का नाश संभव नहीं है। हम मात्र देवता विरोधी हैं, हमारा देवता विरोधी होना स्वाभाविक है। देवता सदा हम पर अन्याय करते आए हैं, हम पर अन्याय कर उन्होंने अपने धर्म का निरादर किया है, परंतु हमने अपनी प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं किया, अतः हमने धर्म का पालन किया है।
0: आप सत्य कहते हैं, आपकी प्रजा आपसे अति प्रसन्न है, सुखी है, परंतु देवताओं के अधिकार हड़प लेना क्या देवताओं के साथ अन्याय नहीं है?
1: नहीं, ये अन्याय नहीं। देवताओं द्वारा समय समय पर असुरों के ऊपर किए गए अन्यायों का प्रत्युत्तर है। यदि देवताओं का हमारे साथ अन्याय अधर्म नहीं, तो हमारा ये कथित अन्याय भी अधर्म नहीं।
0: शंखचूड़, असुरों और मानवों की भांति देवता भी सर्वेश्वर की प्रजा हैं। वे अपनी प्रजा के एक भाग पर अन्याय कैसे सहन कर सकते हैं? उनकी क्रोधाग्नि से बचने का आपके पास एक ही उपाय है। आप शांति पूर्वक देवताओं के राज्य उन्हें लौटा दें, युद्ध टल जाएगा।
1: अरे मूर्ख दूत, तू व्यर्थ समय नष्ट ना कर, मुझे युद्ध से भयभीत कर रहा है। मैंने दृढ़ निश्चय कर रखा है, तेरे परमेश्वर से युद्ध किए बिना ना तो मैं देवताओं के राज्य लौटाऊंगा और ना ही उनके अधिकार पुनः उन्हें दूंगा। जा, मेरा ये प्रण अपने भभूतधारी स्वामी को बता दे, वो जो उचित समझे करें।
2: नहीं स्वामी, ये उचित नहीं हो रहा। देवाधिदेव शंकर सर्वशक्तिमान है।
1: अवश्य होंगे तुलसी, परंतु उनके दूत के मुख से ही युद्ध का निमंत्रण पा मैं शंभू से युद्ध करने को तत्पर हुआ हूं। युद्ध तो मैं अवश्य करूंगा, और देवी आपका सतीत्व जिसका बल हो उसे तो शिव भी पराजित नहीं कर सकते।
2: यदि आप निर्णय ले ही चुके हैं तो आपको रोकना व्यर्थ है। मैं आपकी विजय की मंगल कामना करती हूँ। लीजिए, विष्णु जी द्वारा दिया अपना ये कवच पहन लीजिए। इसे आप मेरा स्पर्श मानकर कभी तन से ना उतारिएगा। जब तक ये कवच आप धारण किए रहेंगे, कोई भी आपका अनिष्ट नहीं कर पाएगा। इस कवच में मेरा शील समाया रहेगा।
1: अब तो मैं दुगना अभेद्य हो गया। एक ओर आपका शील, दूसरी ओर ये कवच।
2: स्वामी, एक आग्रह करने की अनुमति चाहती हूँ।
1: निसंकोच कहो तुलसी।
2: भगवान शिव ने युद्ध टालने के प्रयास में आपके पास अपना दूत भेजा था।
1: हाँ, तो
2: आप भी अपना कोई दूत उनके पास भेजकर शांति का प्रयास क्यों नहीं करते?
1: हम युद्ध से भयभीत नहीं है देवी तुलसी।
2: दूत भेजने का मेरा तात्पर्य ये कदापि नहीं था नाथ। मैं जानती हूँ आप परम बलशाली हैं।
1: फिर ये सोचा।

0: आव देने के पीछे आपका क्या तात्पर्य था?
1: ये तो राजनीति की परंपरा है। यदि कोई आपके पास अपने दूत द्वारा कोई संदेश भेजता है तो आपको भी प्रत्युत्तर में ऐसा ही करना चाहिए। इससे आपकी मर्यादा बढ़ती है।
0: ठीक है, हम भी अपना एक दूत भेजकर शिव को ये जता देते हैं कि राजनीति अथवा कूटनीति उन्हीं के अधिकार में नहीं है। हमें भी ये कलाएं आती हैं। हम अभी एक दानेश्वर को अपना दूत बनाकर देवताओं के पक्षधर शिव की सभा में भेजते हैं।
2: नहीं दूत, नहीं, हम ईश्वर किसी का भी पक्ष नहीं लेते। पक्षपात करने के लिए हम स्वतंत्र ही नहीं, सदा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं और उन्हीं की इच्छा से उनके कार्य करते हैं।
3: प्रलय समुद्र में मेरी ब्रह्मा की ही प्रार्थना पर श्रीहरि तथा दैत्य मधुकैटभ के बीच युद्ध हुआ था।
2: त्रिपुरा सुरों के साथ युद्ध करके हमने उन्हें भस्म कर डाला। ये भी हमारे भक्त देवताओं के अनुरोध पर ही हुआ था।
3: सर्वेश्वरी जगजननी का शुंभ निशुंभ से भी युद्ध देवताओं के ही आग्रह का परिणाम है।
2: और अब ब्रह्मा जी और श्री विष्णु हरि एक बार फिर हमारी शरण में आए हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत होकर ही हम तुम्हारे स्वामी शंख चूड़ से युद्ध करने को तत्पर हुए हैं।
4: अर्थात आप ईश्वर देवताओं की प्रार्थना के वशीभूत होकर ही असुरों का नाश करते हैं।
3: मत भूलो ऐ दूत, अनेक महाबली असुरों की भक्ति से प्रभावित होकर मुझ ब्रह्मा ने उन्हें दीर्घायु होने के वरदान भी दिए हैं, परंतु मूर्ख दैत्यों ने उन वरदानों का निरादर करके सदा धर्म का नाश किया है।
4: परंतु मेरे स्वामी धर्म भीरु हैं, अपना धर्म निभाते हुए अपनी प्रजा की सेवा में रत हैं।
2: दूत, हमारी प्रजा में देवता भी सम्मिलित हैं, हमें उनके हित को भी देखना है और इस देव कार्य की सिद्धि के लिए युद्ध करने में हम कदापि लज्जित नहीं हैं। इसीलिए हम कहते हैं शंखचूड़ देवताओं के अधिकार उन्हें दे दे, हम बिना युद्ध किए लौट जाएंगे। तुम्हारे स्वामी की प्राण रक्षा हो जाएगी, अन्यथा वो जैसा उचित समझे करे। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है।
4: फिर तो युद्ध होकर ही रहेगा।
5: महाज्ञानी शौनक जी महादेव की चुनौती स्वीकार करके शंखचूड़ ने युद्ध को ही अंगीकृत किया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवाधिदेव शिवगणों तथा शंखचूड़ और दैत्यों के बीच हो रहे भीषण युद्ध का निरीक्षण कर रहे थे। जब भद्रकाली शंखचूड़ से युद्धरत थी तभी एक आकाशवाणी हुई।
6: क्या कहा आकाशवाणी ने सूत जी?
5: आकाशवाणी ने भद्रकाली को सावधान किया कि वे अपनी शक्ति शंखचूड़ से युद्ध करके क्षीण ना करें, क्योंकि वो उनके द्वारा अवध्य है, मात्र देवाधिदेव ही उसका नाश कर सकते हैं।
6: फिर क्या हुआ सूत जी?
5: आकाशवाणी सुनकर स्वयं देवाधिदेव ने अपने गणों तथा पुत्रों गणेश एवं कार्तिकेय के साथ समरभूमि में पदार्पण किया
6: तथा शंखचूड़ का नाश कर दिया।
5: इतनी शीघ्रता से नहीं शौनक जी, अभी तो शंखचूड़ की इस कथा में अनेक अन्य मोड़ आने शेष हैं, जिनका विस्तृत वर्णन हम अपनी अगली भेंट में करेंगे।
7: श्रोताओं, शिव महिमा का आज का प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता पंचम खंड के 13वें अध्याय से लेकर 35वें अध्याय तक से लिया गया था। रूपांतरकार और निर्देशक थे अनिल सूद। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सेठी, गौरव मारवा, हर्ष बाला, कमल साथी, राजेश आहूजा, सलीम खान।

मनोज भटनागर, अजय मनचंदा, एस के बत्रा और केदारनाथ। संगीतकार थे राजीव हक्सर, गायक मंजीत भाटिया और गणेश प्रसाद विद्यालंकार।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन अर्चन भजन कीर्तन नाम सुमिरन उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना

अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजा कर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: पिछली कड़ी में आप सुन चुके हैं कि किस तरह श्री राम के परम भक्त हनुमान लंका के अशोक वाटिका तक पहुंचते हैं। आप लंका दहन का पूरा प्रसंग भी सुन चुके हैं। इस बीच राम और उनकी सेना समुद्र पार कर लंका पहुंचती है और राक्षस राज रावण की असुर सेना के विरुद्ध युद्ध के लिए मोर्चा संभालती है। अब सुनिए आगे। इस कड़ी के लेखक हैं डॉक्टर राम

0: अंगद द्वारा रावण के सब समाचार पाकर श्री राम ने अपने सभी मंत्रियों को पास बुलाया और लंका पर आक्रमण की योजना बनाई। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए और इसके लिए उपयुक्त सेनापति भी नियुक्त किए गए। श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करते हुए वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। दूसरी ओर लंका में भी बड़ा कोलाहल मच गया। अहंकारी रावण ने सारा समाचार सुनकर कहा,
1: इन बंदरों की ढिटाई तो देखो, मरने चले आए। राक्षसों की सेना को बुलाओ। ये बंदर काल से प्रेरित होकर ही यहां चले आए हैं। मेरे राक्षस वीर भी न जाने कब से भूखे हैं।

0: लिखा है गृह बैठे आहार विधि दीना। सुबत सकल चारों दिशे जाऊ धर धर भालु की सब खाऊ।
1: श्री रामचंद्र महाराज की
2: जय।
1: श्री रामचंद्र महाराज की
2: जय।
3: भयानक संग्राम होने लगा। धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट भालु गढ़ पर डा रही झपटही चरण गही पटकी मही भजी चलत बहुरी पचा रही। वानरों के आतंक से राक्षसों के समूह उसी भांति भाग चले जैसे प्रबल वायु के चलने से बादलों के समूह बिखर जाते हैं। लंकापुरी में हाहाकार मच गया। जब रावण ने अपनी सेना को विचलित होते हुए सुना तो भागते हुए योद्धाओं को लौटाते हुए उसने क्रोध से कहा,
0: सुनो वीर सुनो, जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना, सर्व सुखाय भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा।
4: सचमुच हमें समर भूमि से नहीं भागना चाहिए, रण में लड़ने में ही वीर की शोभा है।
5: शत्रु को ललकारे और वानर भालुओं से भिड़े।
4: कहाँ है अंगद और हनुमान,
5: नल नील और दुर्विंद कहाँ है?
6: श्री रघुवीर की
2: जय।
6: श्री रघुवीर की
2: जय।
4: वो देखो हनुमान लंका के गढ़ पर कूद कर पहुँचे, एक पर्वत लेकर मेघनाथ पर दौड़े।
5: अरे पंजम रथ सारथी निभाता, ताही हृदय महु मानस खिलाता।
4: उधर देखो उधर देखो, उधर गढ़ पर हनुमान को अकेले जानकर अंगद भी उतर कर गढ़ पर चढ़ गए।
7: दोनों ही हमारी सेना के विरुद्ध क्रोध से लड़ने लगे हैं।
8: हमारी वानर सेना कितनी विकट है, अंगद और हनुमान दोनों ही दुर्ग में प्रवेश कर गए हैं। दोनों लंका को ध्वंस करते हुए ऐसे शोभित हैं जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हैं।
3: इस भयानक संग्राम की कोई तुलना नहीं थी। द्वौदल प्रबल पचारी पचारी लरत सुभट नहीं मा नहीं हारी। राक्षसों के दो सेनापतियों अकंप और अतिकाय ने अपनी सेना को विचलित देखकर माया की। भय निमिख मह अति अंधियारा, बृष्टि होई रुधिरो पल धारा। घने अंधकार को देखकर बानरों की सेना में खलबली मच गई। वे जहां तहां पुकारने लगे, हे राम बचाओ, हे रघुवीर रक्षा करो। तब कृपालु श्री राम ने हंसकर धनुष चढ़ाकर शीघ्र ही अग्निबाण चलाया। उससे तुरंत प्रकाश हो गया। प्रकाश होते ही भालु बलिमुख पाई प्रकाशा, धाये हरख विगत श्रमुत्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहीं भाली बली मुख, रिपु दल बल बिचलाई। इधर तो श्री राम जी की सेना राक्षसों का विनाश कर रही थी, और वहां दसानन सचिव हंकारे, सब सन कहे सी सुभट जे मारे।
0: मंत्रियों, बंदरों ने आधी सेना का संहार कर डाला। अब कहो क्या उपाय करना चाहिए? माल्यवंत
9: जी,
0: आप वयोवृद्ध और हमारे श्रेष्ठ मंत्री हैं, आप ही कुछ उपाय सुझाइए।
9: सुनहु तात कछु मोर सिखावन, जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होई न जाही बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख कहु न सुख पायो।
0: क्या कहा?
9: तुम नहीं जानते लंकेश, स्वयं कृपालु भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, जो स्वयं काल रूप हैं, जो दुष्ट रूपी वनों को जलाने में अग्नि की भांति हैं, जो गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं, शिव और ब्रह्मा भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे कैसे विरोध किया जा सकता
0: है? मालिवंत,
9: इसीलिए अपनी शत्रुता छोड़कर उन्हें जानकी जी सौंप दो और कृपा निधि परम स्नेही श्री राम का भजन करो।
0: अरे भागे, तू अपना मुख काला करके यहां से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं स्वयं तुझे मार डालता।

0: अब मेरी आंखों को अपना काला मुंह न दिखला।
1: लगता है तू श्री राम के हाथों अवश्य ही मरना चाहता है। चला जाता हूं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
2: पिताजी प्रातःकाल मेरा चमत्कार देखिएगा। अधिक क्या कहूं, बहुत कुछ करूंगा।
1: तो ठीक कह रहा है मेघनाथ, मेरे मन में भरोसा है कि तू जो कह रहा है उसे करेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।
3: घोसलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं, जो समस्त लोकों में धनुर्धर प्रसिद्ध हैं? नल, नील, दिवित, सुग्रीव और अत्यंत बलियंगत और हनुमान कहाँ हैं? अपने भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं हठपूर्वक उसे और सबको मारूंगा।
4: मेघनाद ने बड़ा विकराल युद्ध किया।
5: उसके द्वारा अपनी सेना को विकल देखकर पवन पुत्र हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े जैसे स्वयं काल दौड़ता है। उन्होंने एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़ लिया और मेघनाद पर डाल दिया। पर पहाड़ गिरते देखकर मेघनाद आकाश में चला गया। उसके रथ, सारथी, घोड़े सब नष्ट हो गए। रघुपति निकट गए घननादा, नाना भांति करे सी दुर्बाधा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटे निवारे। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना।

0: लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा क्रोध से भरे हुए एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। लक्ष्मण जी के प्रहारों से मेघनाथ प्राण मात्र शेष रह गया। प्राण संकट में देख उसने वीर घातिनी छांडे सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। शक्ति के लगने से श्री लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। हनुमान उन्हें श्री राम के निकट ले आए। छोटे भाई को मूर्छित देखकर प्रभु राम बहुत दुखी हुए। जाम्बवान के परामर्श से हनुमान लंका गए और वैद्य सुषेण को ले आए। वैद्य ने श्री राम के चरणों में माथा नवाकर हनुमान को पर्वत से औषधि लाने के लिए भेजा। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भागी। मार्ग में रावण द्वारा प्रेरित काल नेमि का वध करते हुए हनुमान पर्वत पर पहुंचे। वहां औषध को न पहचानने के कारण पर्वत को ही उखाड़कर आकाश मार्ग से चले। जब अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंचे तब देखा भरत, विशाल अति निशिचर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारेऊ चाप श्रवण लगितान।
1: श्री राम।

0: श्री राम,
1: जिस भाग्य ने मुझे श्री राम जी से विमुख कर दिया है उसी ने यह भयानक दुख दिया है। यदि मनसा वाचा कर्मणा प्रभु राम के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो ये वानर पीड़ा से मुक्त हो जाए, इसकी मूर्छा दूर हो जाए।
0: कुशलाधीश
1: हे तात, लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान राम का कुशल समाचार सुनाओ।
0: वनवास के प्रसंग में जब श्री राम जी लक्ष्मण जी तथा माता जानकी के साथ पंचवटी में विश्राम कर रहे थे तो षड्यंत्र रचकर लंकापति रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फलस्वरूप वानर आदि जातियों की सेना सजाकर श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। उसी युद्ध में मेघनाथ की शक्ति द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मैं उन्हीं के लिए हिमशिखर से औषधि लेने गया था। प्रातःकाल होने से पूर्व मेरा पहुंचना आवश्यक था।
1: हाँ दैव, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मैं प्रभु के एक काम भी नहीं आया। हे तात, तुम्हें जाने में देर होगी और प्रातःकाल होते ही सारा कार्य बिगड़ जाएगा। मेरे बाण पर तुम पर्वत सहित चढ़ो, मैं तुम्हें कृपा निधान राम के पास भेज दूंगा।
0: नहीं प्रभु, आपका प्रताप हृदय में रखकर मैं शीघ्र ही जाऊंगा। आप मेरा प्रणाम स्वीकारें।

आधी रात बीत चुकी, अभी तक हनुमान नहीं आए। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदैव सही कोमल रहा है। मेरे लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में शीत कृष्ण और तीक्ष्ण वायु सहन की। हाँ, वैसा प्रेम अब कहाँ है। मेरे विकल वचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं उठते। जो जनते बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेउ नहीं हो। सुत भित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बार ही बारा। अस बिचारी जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फणि करिबर कर हीना। असम जीवन बंधु बिनु तोही, जौ जल देव जियावै मोही। हाय हाय, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। मेरा कठोर हृदय तुम्हारे शोक को कैसे सहन कर पाएगा। नीच जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। सौ पैसी मोहि तुम्हें ही गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहु तेह जाई, उठ किन मोहे सिखावहु भाई। हाय।

0: कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, तो नींद से जागो भाई, वहां अपनी सेना नष्ट हुई जा रही है और तुम्हें नींद क्या रही है। उठो कुंभकर्ण।
1: भाई मुझे कैसे जगाया, तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं।
0: कुंभकर्ण, मारीच की सहायता से मैं अयोध्या के वनवासी राजकुमार राम की पत्नी सीता को हरलाया था। उसी ने वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की है। हे भाई, वानरों ने सब राक्षस मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवान तक, मनुष्यों को खाने वाली अतिकाय, अकंपन और महोदर आदि सभी वीर युद्ध में मारे गए हैं।
1: मूर्ख, जगत जननी का हरण कर तू अपना कल्याण चाहता है, राक्षस राज ये तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे किस लिए जगाया है। भाई अब भी तू अपना अभिमान छोड़ दे, श्री राम का भजन करे तो तेरा कल्याण होगा। श्री हनुमान जैसे वीर जिसके सेवक हैं, क्या वे श्री रघुनाथ सामान्य मनुष्य है।
0: कुंभकर्ण, ये तुम क्या कह रहे हो।
1: भाई बहुत बुरा काम किया तूने, पहले ही आकर अपनी बात मुझे क्यों ना सुनाई। तूने तो उस देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मादि देवता सेवक हैं। अच्छा तो अब तू अंतिम बार मुझसे भेंट कर ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं और तीनों तापों के दूर करने वाले श्याम शरीर और कमल नयन श्री राम के दर्शन करूं।
0: कुंभकर्ण, अब ये बेकार की बातें छोड़कर रक्षा का कोई उपाय करो।
1: अच्छा राक्षस राज, पहले मेरे लिए आहार लाओ। मदिरा के घट और भैंसों का समूह कहाँ है। आहार लेने के बाद मैं सेना लेकर राम से लड़ने जाऊंगा। ये सामने से कौन चला रहा है।
2: मैं आपका छोटा भाई विभीषण आपके चरणों में प्रणाम करता
1: हूं। प्रसन्न रहो, कहो कैसे हो।
2: तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तहीं गलानी रघुपति पहीं आए हूं।

0: देख दीन प्रभु के मन भाय।
1: सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। बंधु वंश ते कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। तू मनसा वाचा कर्मणा प्रभु का भजन कर, रावण की बात पर मैं भी काल के वश हो गया हूँ। मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा है। अच्छा अब तू जा और मैं भी चला। खाऊंगा सबको खा जाऊंगा।
2: अरे दुष्ट कुंभकर्ण, ठहर, मैं इस वार से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ।
3: अरे ये क्या, ये तो भाई कुंभकर्ण का सिर जान पड़ता है। हाँ भाई कुंभकर्ण, तुम भी रणक्षेत्र में मरण को प्राप्त हुए।
4: हे पिता, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी अपनी प्रशंसा क्या करूं, मैंने अपने इष्ट देव से जो शक्ति और रथ प्राप्त किया है वो अब तक मैंने आपको नहीं दिखलाया, कल देखिएगा।
0: प्रभात होते ही मेघनाद युद्ध भूमि में जा डटा। उसने विविध भयानक युद्ध किया। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों से छा दिया। श्री राम की सेना के सभी वीर व्याकुल हो गए। लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि की देह को बाणों से छलनी बनाकर मेघनाद ने श्री राम जी पर आक्रमण किया। उसने बाणों के नागपाश में श्री राम जी को जकड़ लिया। श्री राम भी नट की भांति अनेक प्रकार से कौतुक करने लगे। जब जाम्बवान ने मेघनाद को ललकारा, मेघनाद ने एक पैना त्रिशूल चलाया। जाम्बवान ने उसे बीच में ही पकड़कर मेघनाद की छाती में मारा। वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। इधर देवर्षि नारद ने गरुड़ जी को भेजा। उसने श्री राम के शरीर में लिपटे हुए सभी माया सर्पों को खा लिया। वानर के समूह भी माया से मुक्त होकर हर्षित हो गए। जब मेघनाद मूर्छा से जागा तो पिता को देखकर उसे बड़ी लज्जा आई। वो विजय यज्ञ करने की इच्छा से एक पहाड़ की कंदरा में चला गया। तभी विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से आकर कहा,
5: हे अतुल बल वाले प्रभु, मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यदि ये यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो फिर उसे प्रभु शीघ्र ही जीता नहीं जा सकेगा।
2: अंगद, सुग्रीव आदि बंधुओं, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और उसका ये यज्ञ विध्वंस करो। और लक्ष्मण, तुम्हें उसे युद्ध में मारना। देवताओं को भय से संतुष्ट देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। अपने बल और बुद्धि से इस भांति उस निशाचर को मारना जिससे वह क्षीण होकर मर जाए। हे जाम्बवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों लक्ष्मण के समीप सेना सहित रहना।
6: मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जोते ही आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत्संग कर ही सहाई, तदपि हतो रघुबीर दुहाई।

0: पापी को मैंने बहुत खेल खिलाया, अब इसे मारूंगा। जय श्री राम।
1: लक्ष्मण कहाँ है? राम राम कहाँ है?
2: तेरी माता धन्य है मेघनाथ, धन्य है। तेरे मुख से मरते समय राम का नाम तो निकला।
3: जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ का वध सुना तो वो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी अपनी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। नगर के लोग व्याकुल होकर सोचने लगे और सभी रावण को अपशब्द कहने लगे। रावण ने सब स्त्रियों को समझाया कि समस्त संसार नाशवान है, किंतु स्वयं रावण पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। रात बीतने पर सवेरा हुआ और रींच तथा वानर फिर चारों द्वारों पर इकट्ठे हो गए।
4: सुनो, तुम रीछ और वानरों के झुंडों को मत हल डालो, मैं दोनों राजकुमार भाइयों से लड़ूंगा।
5: मेरा रथ छोड़ ले चलो।
6: नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जीता वीर भलवाना।
7: सखा सुनो, जिस रथ से विजय होती है वो दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु चोरे। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपु ताके। मित्र जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्गम शत्रु को भी जीत सकता है।
6: हे कृपाल, हे सुख निधान, इसी बहाने आपने मुझे महान उपदेश दिया। प्रभु मैं धन्य हुआ। प्रभु

0: दशकंदर संभल, अब तेरी मृत्यु समीप आ गई है।
1: जीते हो जे भट संजुग माही, सुनता पस मैं तिन समनाही। रावण नाम जगत ज सजाना, लोक बजा के बंदी खाना। खर दूषण विराद तुम हमारा, बदिर व्याद बाल बिचारा। निश्चर निकर सुबट संघारे हु, कुंभकर्ण घननाद हे मारे हु। आज बैर सब ले निबाही।
2: जो रण भूप भाजी नहीं जाही, आज करहु खलु काल हवाले, परे कठिन रावण के पाले।

0: बड़ा विकराल युद्ध हुआ। श्री राम जी ने बार बार रावण के सिर और भुजाओं को काटा और वे बार बार उगाए। आकाश में सिर और बाहु जैसे छा गए, मानो असंख्य केतु और राहु हूं। हनुमान, विभीषण आदि सभी के साथ युद्ध करते हुए रावण ने अपार शक्ति और माया का प्रदर्शन किया। वानर सेना का विध्वंस देखकर जांबवान ने रावण की छाती में लात मारी। इससे रावण व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा, उसे मूर्छा आ गई। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में उठाकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। इधर तो ये सब हो रहा था, उधर उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें ये सब कथा सुनाई।
1: हो ये कहा कहा से किन माता के विधि मरे ही पे सुदुख दाता। कैसे आश्चर्य की बात है कि रघुपति सर सिर कटे हूँ न मरई, पिथ विपरीत चरित सब करही। मोर अभाग्य जियावत ओही, चेहि हूँ हरिपद कमल बिछोही।
2: धीरज रखो राजकुमारी, मुझे पूरा भरोसा है कि हृदय में वाण लगते ही देवताओं का शत्रु मारा जाएगा। देखिए, प्रभु ताते उर हतई न तेही, एही के हृदय बसती बाय देही। सुंदरी, संदेह मत करो, सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर हो ही विकल, छुटी जा यही तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु मरे ही राम सुजान। चिंता मत करो, सब प्रकार तुम्हारा कल्याण ही होगा। अच्छा, देर हो रही है, मैं चलूं।
1: अरे तुष्ट चंद्रमा, तुझे शीतल कौन कहता है, तू तो बहुत ही दुखदाई है और

0: ये रात भी तो नहीं बीत जाती। हाय युग संभय सिरा दिन राती। अरे इस समय ये मेरा बायां नेत्र और बाहु कैसे फड़क उठे? क्या क्या ये शुभ शकुन इस बात की सूचना है कि कृपालु श्रीराम जी से शीघ्र ही भेंट होगी? प्राणनाथ स्वामी,
1: आधी रात को रावण मूर्छा से जागा। उसने सारथी को धिक्कारा। सवेरा होते ही वो रथ पर चढ़कर फिर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। फिर बड़ा भयानक युद्ध हुआ। श्री राम जी के बाणों से रावण के शरीर से रुधिर की धारा बह चली। स्रवत रुधिर धायौ बलवाना, प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत सीस मही पारे। काटते ही पुनि भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिर हये, कटत झटत पुनि नूतन भये। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशला धीसा। काटे सिर भुज बार बहु, मरतन भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश।
2: शत्रु को जीवित देख देवता सिद्ध और मुनि व्याकुल हो रहे हैं प्रभु।
3: क्या तुम भी भयभीत हो विभीषण?
2: हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, रावण के नाभि कुंड में अमृत का वास है प्रभु। रावण उसी के बल पर जीवित है।
4: कहाँ राम, कहाँ राम रणहतो प्रचारी।
5: श्री रामचंद्र महाराज की
1: श्री राम जी के बाणों ने रावण की भुजाएं और सिर मंदोदरी के सामने लाकर गिरा दिए। पति का शीश देखते ही मंदोदरी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। अन्य स्त्रियां रोती हुई दौड़ी। वे मंदोदरी को उठाकर रावण के शव के पास ले गईं।
0: धरणी तेजहीन पावक धरणी, शेष कमठ सही सकही न भारा, सोतन भूमि परे परिचारा। स्वामी, विदाता की समस्त सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोगों के स्वामी सदैव डरते हुए तुम्हें मस्तक नवाते थे। अब तुम्हारे सिर और भुज दंड गीदड़ों का भोजन बनेंगे। श्री राम से विमुख रहे, ये तो होना ही था। काल के वशीभूत होने के कारण तुमने मेरा भी कहना नहीं माना और चराचर के स्वामी श्री राम को तुमने सामान्य मनुष्य समझा। हे स्वामी, तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने पर तत्पर रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ।
1: घर की सभी स्त्रियों को रोती हुई देखकर अत्यंत दुख से विभीषण

लक्ष्मण उनके पास गए। भाई रावण की दशा देखकर वे बहुत दुखी हुए। प्रभु राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने विभीषण को धैर्य दिया। प्रभु राम की आज्ञा मानकर देश काल के अनुसार विभीषण ने रावण की सब क्रियाएं की और मंदोदरी आदि स्त्रियों ने रावण को तिलांजलि दी। वे सब मन ही मन प्रभु राम के गुणों का वर्णन करते हुए महलों में चली गई। तदनंतर श्री राम के आदेशानुसार लक्ष्मण जी, वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जांबवान और हनुमान ने नगर में जाकर विभीषण को सादर सिंहासन पर बैठाकर उनका राज तिलक किया और रीति के अनुसार उनकी स्तुति की। विभीषण का राज तिलक होने के उपरांत सभी वानर विभीषण सहित प्रभु राम के पास आए और श्री राम ने प्रिय वचन कहकर सभी को सुखी किया।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगे उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

पूछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं, पूछे कौशल्या दुखियारी।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।